0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: द न्यूज प्लस।

0: राम्रो लिजौ वन उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक बनियो नि ढाल्नेछ अनुगमन दुने व्यवस्था चौसर्गी दुए
1: गेचो छानेला खोरे ल चाउसी खोलिए हरिदे तरिन गाई गेजो मेकेलाई जु अब नजिरे बनाए गेम ये ल गेजो मेके नलाए औले मलाई ओके लाइए
0: वन जंगल स जुडिसि हो गेम बारी ल बाली नाली चुला चुली यात्रा रस चाउसो छिमी ने चाउसो सहिले के खेले या
1: वन जंगल मेला दु गेमाइए नेवला दिकिनी पार
0: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सभा विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा